कुमुद कुलकर्णी के स्वर में संत तुलसीदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम आइए अब सुनते हैं चंद्रकांत काय के स्वर में संत एकनाथ की ये भक्ति रचना।

संत एकनाथ की भक्ति रचना अभी आपने सुनी चंद्रकांत काले के स्वर में। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना संत तुलसीदास की, जिसे गाया है आर्य ठाकुर ने।

आरती ठाकुर ने गाई संत तुलसीदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब समूह स्वर में सुनते हैं संत तुकाराम की ये भक्ति रचना, जिसके संगीतकार हैं तादाद सानकर।

संत तुकाराम की ये भक्ति रचना समूह स्वर में अभी हमने सुनी, जिसके संगीतकार थे दादा चांदेकर। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं संत भानुदास की ये रचना, जिसे गाया है मनोहर सबने और सहकारियों ने।

मनोहर सबनीस और सहकारियों ने गाई संत भानुदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। यह आकाशवाणी पुणे का निर्माण था जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर समय हर पल।

Ah.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में लीजिए पेश है राग रामकेली पर ख्याल गायन. कलाकार हैं मधुमिता चट्टोपाध्याय. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं समीर आचार्य और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं कमलाक्षा मुखोपाध्याय. तो लीजिए प्रस्तुत है राग रामकेली पर ख्याल गायन. कलाकार हैं मधुमिता चट्टोपाध्याय.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to a khayal in the rag Ramkeli. Our artist is Madhumita Chattopadhyay. Accompanying her on the tabla is Samir Acharya and on the harmonium is Komalakho Mukhopadhyay. Listen now to khayal in the rag Ramkeli. Our artist, Madhumita Chattopadhyay.

0: अभी आप राग रामकेली पर ख्याल गहन सुन रहे थे। कलाकार थी मधुमिता चट्टोपाध्याय। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे समीर आचार्य और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे कमलाक्षा मुखोपाध्याय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी प्रस्तुत है राग बैरागी पर वायलिन वादन। कलाकार हैं अभिषेक सिन्हा। तो लीजिए प्रस्तुत है राग बैरागी पर वायलिन वादन। कलाकार हैं अभिषेक सिन्हा।
1: You were listening to a khayal in the rag Ramkeli. Our artist was Madhumita Chattopadhyay. Accompanying our artist on the tabla was Meer Acharya and on the harmonium was Komalakho Mukhopadhyay. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing concert, we now present a violin recital. Listen to a violin recital in the rag Bairagi. Our artist is Abhishek Sinha. Listen now to the violin in the rag Bairagi. Our artist, Abhishek Sinha.

0: अभी आप राग बैरागी पर वायलिन वादन सुन रहे थे। कलाकार थे अभिषेक सिन्हा। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: We're listening to a violin recital in the Raag Bairagi. Our artist was Abhishek Sinha. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Raagam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर आज के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं पंडित सामता प्रसाद का तबला वादन, प्रारंभ में ताल गणेश ताल। लहरा साथ कर रहे हैं श्री राम शाहपुरकर।

अभी अपने पंडित सामता प्रसाद का गणेश ताल सुना, आइए अब सुनते हैं ताल धमार। लहरा साथ कर रहे हैं श्रीराम शाहपुरकर।

अभी अपने पंडित सामता प्रसाद का तबला वादन सुना। आइए कार्यक्रम में आप सुनते हैं ताल केहरवा। लहरा साथ कर रहे हैं श्रीराम शाहपुरकर।

ಕಟ್ಟಾ ಕಡ ಧಾ ನಾ ಕಡ ಧಾ ನಾ ಕಾ ಧೇತಿ ಧಾ ಧನಿ ಧಾ ಕಾ ಧಾ ಧನಿ ಧಾ.

Ich bin gerade.

धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा धागड़ा

ಕಟ್ಟಾಕ್ರಾಂತ.

अभी अपने योगेश शमसी ने तबले पर बजाया ताल रूपक सुना, लेरा साथ की थी हारमोनियम पर अप्पा जळगावकर ने। अब प्रस्तुत है योगेश शमसी का तबला वादन ताल झपताल।

अभी आपने योगेश समसी का ताल झपताल सुना, हारमोनियम पर लेरा साथ की थी अप्पा जलगांवकर ने। रागम 24/7 DTH के लिए ये आकाशवाणी पुणे की निर्मिति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित अभय नारायण मल्लिक का गाया राग अहीर भैरव. चौताल में निबद्ध ध्रुत के बोल हैं, प्रातः समय श्याम सुंदर को रूप निहारत. पखावज पर आपकी संगति की है मोहन श्याम शर्मा ने.
2: This is the Ragam channel of Folio Radio. We now present a vocal rendition by Pandit Abhay Narayan Malik. First listen to Rag Ahir Bhairav. The alap is followed by Dhrupad, which is set to Chautal. The words are Pratah Samay Shyam Sundar Ko Roop Niharat. He is accompanied by Shri Mohan Shyam Sharma on Pakhavaj.

0: अभी आप पंडित अभय नारायण मलिक का गाया राग अहीर भैरव सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग तोड़ी, बोल हैं परी आली री। पखावज पर आपकी संगति की है मोहन श्याम शर्मा ने।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन बाय पंडित अभय नारायण मलिक। नाउ लिसन टू राग तोड़ी। द आलाप इज फॉलोड बाय धमार। द वर्ड्स आर परी आली री। He is accompanied by Shri Mohan Shyam Sharma on Pakhavaj.

0: अभी आप पंडित अभय नारायण मलिक का गाया राग तोड़ी सुन रहे थे। पखावज पर आपकी संगति की थी मोहन श्याम शर्मा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग तोड़ी बाय पंडित अभय नारायण मलिक। ही वाज अकंपनीड बाय श्री मोहन श्याम शर्मा ऑन पखावज। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर आज के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में सुनेंगे दत्तोपंत जोशी मंगल वेढ़ेकर का पखवाज वादन, प्रारंभ में सुनते हैं ताल धमार, सात संगत, सारंगी लहरा, मधुकर खाड़ीलकर, वॉयलिन पी रामण्णा।

अभी आपने दत्तोपंत जोशी मंगल वेढ़ेकर का पखवाज वादन सुना। सारंग के साथ की थी मधुकर खाडिलकर ने, वायलिन पी रामण्णा।

अभी अपने दत्तोपंत जोशी मंगल वेड़ेकर का ताल सवारी सुना। सात संगत थी सारंगी पर मधुकर खाडिलकर, वायलिन पर पी रामण्णा। आइए सुनते हैं ताल चौताल।

अभी आपने दत्तोपंत जोशी मंगल वेढेकर का पखवाज वादन सुना, ताल था चौताल। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अभी सुनते हैं ताल सवारी।

अभी आपने ताल सवारी सुना, सात संगत थी, सारंगी पर मधुकर खाडिलकर, वायलिन पर पी रामण्णा। अब कार्यक्रम में सुनते हैं दत्तोपंत जोशी मंगल वेड़ेकर का पखवाज वादन ताल धमाड़।

अभी आपने पखवाज वादन सुना, ताल था धमार, सात संगत थी सारंगी पर मधुकर खाडिलकर, वायलिन पर पी रामण्णा। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं दत्तोपंत जोशी मंगल वेढ़ेकर का पखवाज वादन ताल चौताल।

अभी आपने ताल चौताल सुना। सात संगत थी सारंगी पर मधुकर खाडिलकर, वायलिन पर पी रामण्णा। रागम 24/7 डीटीएच के लिए ये आकाशवाणी पुणे की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 डीटीएच चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग विहाग में सरोद वादन. आज के कलाकार हैं पुष्पेन दे. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तुषार दत्ता. तो लीजिए प्रस्तुत है राग विहाग में सरोद वादन, कलाकार पुष्पेन दे.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. This evening, we present a Hindustani instrumental recital. Listen to a sarod recital in Rag Bihag. Our artist this evening is Pushpen De. Accompanying our artist on the tabla is Tushar Datta. Listen now to a sarod recital in the Rag Bihag. Our artist, Pushpen De.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग विहाग में सरोदवादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पुष्पेन डे। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तुषार दत्ता। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सरोद रिसाइटल इन राग बिहाग। Our artist this evening was Pushpen De. Accompanying our artist on the tabla was Tushar Datta. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन. कलाकार हैं पंडित अजय पोहनकर. राग है बिलास खानी तोड़ी. इसमें आप सुनेंगे विलंबित ख्याल जो एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं नी के घूंघरिया. द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बंदिश के बोल हैं कोयलिया काहे करत पुकार. संगत कलाकार हैं तबले पर यदुनंदन गोस्वामी और सारंगी पर समद खां. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अजय पोहनकर. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग बिलास खानी तोड़ी. The accompaniment has been provided by Yadunandan Goswami on the tabla and Samad Khan on the sarangi.

अब आप सुनेंगे राग यमन में मध्य लय बंदिश। बोल हैं सुगम रूप सुहावे, कलाकार हैं पंडित अजय पोहनकर। नाउ लिसन टू द राग यमन बाय पंडित अजय पोहनकर।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज प्रस्तुत है माधुरी मट्टू का गाया राग कामोद. आप सबसे पहले राग कामोद में मध्यलय में ख्याल प्रस्तुत करेंगी जिसके बोल है रुद बसंत सखी मोमन भावत जो कि तीन ताल में निबद्ध है. तत्पश्चात आप दादरा प्रस्तुत करेंगी जिसके बोल है नजर लग जाइए मोरे ललन को.

ये है रागम, 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे माधुरी मट्टो का गाया दादरा। आइए अब सुनते हैं लक्ष्मी शंकर की गाई ठुमरी, राग भैरवी पर आधारित यह ठुमरी दीपचंदी ताल में निबद्ध है। बोल है अब न बोलो मुझसे श्याम।

अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मी शंकर की गाई ठुमरी। आइए अब सुनते हैं बेगम अख्तर की गाई ठुमरी, जिसके बोल है अबके सावन घर आना।

अभी आप सुन रहे थे बेगम अख्तर की गाई ठुमरी। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का गाया एक गजल जिसके बोल है पत्ता पत्ता बूटा बूटा।

है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे बेगम अख्तर का गाया गजल पत्ता पत्ता बूटा बूटा। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित निर्माल्य डे का गायन. इनका गाया राग शुद्ध कल्याण पहले प्रस्तुत है. चौताल में निबद्ध ध्रुपद के बोल हैं अल्लाह साहेब. पखावज पर आपकी संगति की है मोहन श्याम शर्मा ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal rendition by Pandit Nirmalya Day. He is accompanied by Mohan Shyam Sharma on Pakhavaj. First listen to Dhrupad in Rag Shuddh Kalyan, said to Chautal. The words are Allah Sahib.

0: का गाया राग शुद्ध कल्याण सुन रहे थे और प्रस्तुत है राग अडाना। पखावज पर आपकी संगति की है मोहन श्याम शर्मा ने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन बाय पंडित निर्माल्या डे। नाउ लिसन टू राग अडाना, इज अकंपनीड बाय मोहन श्याम शर्मा ऑन पखावज।

0: अभी आप पंडित निर्माल्य डे का गाया राग अडाना सुन रहे थे। पखावज पर आपकी संगति की थी मोहन श्याम शर्मा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग अडाना बाय पंडित निर्माल्य डे। दिस प्रोग्राम इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्ति संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं समर्थ रामदास स्वामी की इस भक्ति रचना से, जिसे गाया है कुमुदिनी पेड़नेकर ने।

कुमुदिनी पेडणेकर ने गाई समर्थ रामदास स्वामी की भक्ति रचना, अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना सुनते हैं सुहास शामगांवकर के स्वर में। रचनाकार हैं संत तुलसीदास, संगीतकार हैं रविंद्र खासनीस।

रविन्द्र खासनीस के संगीत निर्देशन में अभी आपने संत तुलसीदास की भक्ति रचना सुनी, जिसे गाया है सुहास श्यामगांवकर ने। कार्यक्रम की अगली देशभक्ति पर रचना सुनते हैं समूह स्वर में। मानुष की जा शत्रु।

समूह स्वर में अभी आपने ये देशभक्ति पर रचना सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत तुकाराम महाराज की ये भक्ति रचना, जिसे गाया है जानकी अय्यर ने।

जानकी अय्यर ने गाई संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत भानुदास की। आइए सुनते हैं समूह स्वर में, स्वरबद्ध किया है बाल माली ने।

संत भानुदास की ये भक्ति रचना अभी आपने समूह स्वर में सुनी, जिसके संगीतकार थे बाल माली। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना सुनते हैं सुनील पासलकर के स्वर में। यह रचना है संत मुक्ताबाई की।

संत मुक्ताबाई ने रची ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी सुनील पासलकर के स्वर में। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना सुनते हैं अनुराधा मराठे के स्वर में। ये रचना है रमन रणदिवे की।

रमन रणदिवे ने लिखी ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी अनुराधा मराठे के स्वर में। कार्यक्रम की अगली हिंदी भक्ति रचना है संत मीराबाई की, जिसे गाया है श्री गिरीश ने।